पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन बन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा। हमारे दुष्ट सब तुम काब हो, आप हाथ द मोह बचाब हो। सुखी बसै मोरो परिवार, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिया, सब बैरन को आज संगरिय। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहा प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारी तारिया है, चुन चुन सतर हमारे मारिया है। आप हाथ दे मुझे अबरिया, मरण काल का त्रास न मरिया। वो जो सदा हमारे पछाओ, श्री अस तो जो करहो रक्षा। राख ले हो मोह राखण हाड़े, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पड़ी चतुर दास कंता। काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जूथियो। जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ता हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो। आद अंत खै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जने आप सवारी। सेवकर को सब गुण सुख दियो, सतरन को बल मोहबद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक ही पीर पछाना, कट कट के पट पट की जाना। जब उद कर करा करतारा, प्रजा तर तब दे पारा। जब या कर करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देहित हर सब हूँ। जित बदन श्रेष्ठ सब थारे, आप अपने बोझ उचारे।

न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहुपेद कहे हम एक न जानियो। श्री अस्पान कृपा तुमरी करो, मैं न कहो सब तो है बखानियो। दोहरा

प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावड़ियां शब्द ता गावो हरि केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्ज सब सवारना सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मन हम सारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही करते रहे।

सुनते पुनीत कहते पवित सतगुरु रहिया पर पूरे बिनवंत नानक चरण लागे वाजे अरहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो।

दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरविंद जिस मह अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच बेकार तिन संतन कौ बंदना सिर चरणन परतार एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद।

ajar alai apai abai apu aju anas kasu ganj panj lakh pakho kal dial alekho pekho nam kam agahata hanati pramati joni moni na rage na range na rupe na rekhe karmang parmang ganje alekhe भुजंग प्रयात छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल अनामे समस्तल निवासी नरकाम विपूते समस्तल स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सोत्रम विपूते सदा सच दानंद स्तन प्रणासी करिमुल्क निंदा समस्तल निवासी अजायब विपूते गजायब गनीमे हरियं करियं करिमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजयम भव शुभम।

कहूँ सिमट भय शंकर काठा, सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचम पव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव अवृच्छा मेरी तुम करो सिख बर सिख संघरो। दोष जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तोजो तब सरणी परे तिनके दोष दुख हमरे पुरख जान पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए है ताके काल निकट नह है। रक्षा हुए ताहि सब काला दुष्ट रे टरंत काला कृपा दृष्ट तन जाहि हर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध कर्म सब होई दुर्छा छु सके न कोई।

लोक ते रहा, कड़क केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो बारी, सर्व ठौर मोह सहाई, दुष्ट दुख दे ले हो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता, किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दुखियन को छाई करता। श्री अस्तोजो जा पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख नत सब आपत कोई अड़िल, सुनै गुंग जो जाहि सरस न पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतरता आवई, दुख दर्द भाव निकट न तिन नर के रहै, हो जो जाकी एक बार चाओ पई को कह चाओ पई, संपत सत्रह सहस पुण जाय, अर्ध सहस पुण तीन कही जाय, भाद्रव सुधी अष्टमी रव बारा, तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया, पाए गह जब ते तुमरे, तब ते को आंकरे, नहीं अन्यो राम रहीम, पुराण कुरान अनेक कह मत, एक न माने हो सिमरत शास्त्र वेद सबाई, बहुभेद कह हम एक न जाने हो, श्री अस्पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तो ही बखाने हो, दोहरा

कृपा की नी सच्चा मन वसाया जी जंत सब तुदु पाए एक वेक परसन आया लाभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया कह नानक जिसनु आप ठाव तिन अमृत गुर ते पाया भगता की चाल निराली चाला निराली भगता हा केरी बिखम मार्ग चलना लाभ लोभ अहंकार ता तृष्णा बहुत नाही बोलना करने हो तिखी बालो नी की एत मार्ग जाना गुर प्रसादी जिने आप तजया हर वासना समाणी कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली ज्यो तू चलाहे तवचला स्वामी हो क्या जाना गुण तेरे जब तू चलाहे तवचला जना मार्ग पावे हे कर कृपा जन नाम लाहे से हर हर सदा त्यावे हे जिसनु कथा सुनाहे अपनी से गुरद्वारा सुख पावे हे कह नानक सच्चे साहिब जो पावे तवचला बहे एहो सोहेला शब्द सुहावा शब्द सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया एहो तनका मन वसिया जिन धुरो लिखिया आया एक फिरै कनेरे कर हैं गल्लां गली कर न पाया कह नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया पवित होए से जन जिन हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिन त्याया पवित माता पिता कटम सहत स्यों पवित माता पिता कटम सहत स्यों पवित संगत सबाया कहंदे पुर सुनदे पुर से पुर जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिन गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज न उपजाए बिन सहजा सहसा न जाए न जाए सहसा गत संजम राह कर्म कमाए

विस्माद रूप विस्मा रंग विस्मा नग फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडा बिडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफ्त विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह

महाराज धन गुरु अर्जन देव साहब जी माया का प्रभाव पामन शब्द विच दर्शा रहे ने। कल कहा सी मुख बेरावै अंत ठगावै, एक तठौर ओह कही ना समावै, उन मोहे बहुते ब्रह्मांड, राम जनी कीनी खंड खंड। समझ पै जांदी ते माया तो बिना संसार विच है ही कुछ नहीं। ये सारा संसार माया तो ही पैदा होया है।

क्या तब छूटे जब साधु पाया, तदों ये तो मुक्त होईदा जदों साधु पूरा गुरु मुरशद जी नूं प्राप्त हो गया, पूरे गुरु दी सत संगत नूं पाया है। जिहड़े नाम दे रसिया लैण वाले साधु ने बेपरवाह सदा रंग हरका जा को पाख स्वामी, जिन्हों कोई परवाह नहीं है दुनिया, नाम दे रंग विच रत्ता होया साधु महात्मा है, पूर्ण महात्मा। ओदी संगत दा प्रभाव है कि माया दी जहर जेड़ी है उदे विच निर्लेप हो जांदा जी, ये लस जांदी है। ऐसा छुट्टन दा ए होए पूर्ण पुरख दी संगत, पूरे सतगुरां दी मुरशद दी संगत इहदे विच निर्लेप कर दिंदी है, ये तो बचा दिंदी है इहदे डंग तो, इहदे दुखां तो कलेशां तो, जूनियां विच नहीं फिर पैंदा जी। ए संसार दे विच आवागमन तो माया करके ही है, माया दी तृष्णा वासना है जीवां दे अंदर, जिन्नी प्रबल हुंदी ओह वासना दे अधीन ए संसार विच, संसार है ही सब कुछ माया है, संसार विच ही जी फिर वासना अधीन जम्मी ते मरी जांदे ने, 84 लाख जूनियां विच यही माया है।

आचार्य कथा अष्टपदी साधक संग मुख उज्जल हो तो साध संग मल सगली खो तो साधक संग मिट अमान साधक संग प्रकट सु ज्ञान साधक संग बुझ है प्रभ नेरा साध संग सब होत नबेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक उपर जतन साधगी महिमा वर्ण कौन प्राणी नानक साधगी सुबा प्रमाह समानी साधक संग अगोचर मिलाए साधक संग सदा प्रफुलाए साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हो सब की रेनो साधक संग मनोहर बैनो साधक संग न कथू तावै साध संग अस्थित मन पावै साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सु प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु का संग महापनीत साध संग किसन नहीं बैर साधक संग ना बीगा पैर साधक संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग ना ही हो ताप साधक संग

का संग सो तन पावै, जिस तन ते सब को बरसावै। साध कै संग, साध का संग संग साध बसै थन उचै। साधु का संग महल पंचुक सूचै। साधक संग दृढ़ सब धर्म, साधक संग केवल पार ब्रह्म। साधक संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुरबान। साधक संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै। साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को बरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप भुलाय नौ, साध संग अमृत गुण गाय नौ। साध कै संग सर्व थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम। साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध कै संग कलु खत हराय, साधक संग नरक पर हराय। साधक संग इहा उहा सोहेला, साध संग बिछरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावै, साधक संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसाय, नानक उदरा साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नावो, साध संग हर के गुण गावो। साध कै संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट कर दीठा। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संग गत भई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा वेदना जान है, जेता सुनह तेता मुखियान। साध की उपमा तह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊच ते ऊची, साध की शोभा मूच ते मुची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। सलोक

अष्टपदी जिसके अंतरराज मानु सो नरपति होवत स्वानु जो जन मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत आपस को करवंत कहावे जन्म रै बहु जोन प्रमावे धन भूमिका जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसकै हृदय गरीबी बसावे नानक इहा मुक्त आग्या सुख पावे धर्मंता होए कर गरबावे तृण समान कछ संग ना जावे बहु लश्कर मानुख उपर करे आस पल पीतर ताका होए बिनास सब ते आप जान बलवंत खिन मह होए जाए पसमंत किसै न बदै आप अहंकारी धर्म राए तिस करे खुवारी गुर प्रसाद जाका मिटै अमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म पर तारे श्रम पावै सगले बिस्तारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुरग फिर अवतार अनक यतन कर आत्म नहीं द्रवै हर दरगह कहो कैसे गवै आपस कौ जो भला कहावै तिसै भलाई निकट न आवै सर्व की रेन जा का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जानै मुझ ते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए जब एह जानै मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मह फिरता जब तारै को बैरी मीत तब लग निहचल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हो छूटै सहस खटे लख को उठता वै तृप्त न आवै माया पाछै पावै अनक भोग बिखिया के करै नह तृप्तावै खाप खाप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ वृथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसै प्राप्त होए करण करावण आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावण करना हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए जो किछ कीनो सोए अपना रंग सब ते दूर सब हु कै संग बूझै देखै करै बबेक आपह एक आपह अनेक मरै न बिनसै आवै न जाए नानक साध ही रहा समाए आप उपदेसा समझा आप आपे रचिया सब कै साथ आप कीनो आपन विस्थार सब कछ उसका ओह करणै हार उसते भिन्न कह हो किछ होए थान थनंतर एकै सोए अपने चलत आप करणै हार कौत करै रंग उपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किनै वखियानी सच सच सच सब कीना।

उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतर चिंद आस नित त्याग हो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती कर हो साध संग अगन सागर तर हो हर धन के भार ले हो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधार हो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित बहो नारायण एक एक रूप जाके रंग नेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है दार उत्तम श्लोक साध के बचन मलीक लाले हे रतना सुनत कमावत होत उदार आप तरा लोका है विस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाका मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाहद वाजै सुन सुनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पै सबरेन अमृत नाम साध संगलैन सो प्रसन्न पै गुरदेव पूर्ण होई सेवक की सेवा आल जंजाल बेकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करहो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसा सो होत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए अस्थान बहर न होवे अमन जान हर धन खाट चला जन सोए नानक जिसा प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्ब तह सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जप मन को सब जुग मै

0: करी
1: दस बस तू ले पाछे पावे
0: एक बस कारण बिखोर दावे
1: पिया दे दस पिया ले
0: तो मुड़ा को कहाँ करे
1: जाकर सुना ही चारा
0: ताको कीजे सत नमस्कारा
1: मन लगा को मीठा
0: सरब सुख पाऊ मन उठा
1: जिन अपना हुक्म मनाया
0: सरब थोक नानक तिन पाया
1: संत सब अपनी देरास
0: खात पीत बरते अन दुलास
1: मान कुछ बार साह ले
0: अज्ञानी मन रोष करे
1: अपनी वर्तित आप ही खोवे
0: बार उसका विश्वास न हो
1: वस्तु आगे रखे
0: रखी आगे मने माथे
1: जगन करे निहाल
0: नानक साहिब सदा दयाल
1: बात माया के हित
0: सर पर वो जान नेत
1: की छाया से रंग लावे
0: ओ बिन से ओ मन पछतावे
1: से सो चालन हार
0: लपट रहे होते अंधकार
1: जो जो लावे नेह
0: ताको हाथ ना आवे के
1: हर के नाम की प्रीत सुखदाई
0: कर कृपा नानक आप ले लाई
1: तन तन कुटुंब सवाया
0: मिटिया हमें ममता माया
1: राज जवन धन माल
0: मिथ्या काम क्रोध विकराल
1: रथ हस्ती असव वस्त्र
0: मिथ्या राम संग माया ते कस्ता
1: त्रो मोह मान
0: मिथ्या आपस ऊपर कत गुमान
1: कर साथ की सरन
0: नानक जप जा जीवे हर के चरण
1: मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने
0: मिथ्या हस पर दरब को हिरे
1: मिथ्या नेत्र पेखल पर त्रह रूपा
0: मिथ्या रचना भोजन अनस्वाद
1: जन पर बकार को तावे
0: मिथ्या मन पर लोभ लुभावे
1: नहीं पर उपकारा
0: मिथ्या बास ले बिकारा
1: मुझे मिथ्या सब पहे
0: सफल दे नानक हर हर नाम ले
1: साथ की आर्जा
0: साथ बिना कहो वसुचा
1: नाम बिना तन अंदर

0: हे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे
1: इस ठाकुर को रख मन माहे
0: हे प्रसाद सुगंध तिन लावे है
1: इसको सिमरत परम गत पावे
0: हे प्रसाद बसे सुख मंदर
1: इसे गाय सदा मन अंदर
0: हे प्रसाद गृह संग सुख बसना
1: आर पढ़े सिमरो तिस रसना
0: हे प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा त्याये क्या अपन जोग
0: हे प्रसाद पाठ पटम भरंडाव है
1: इसे क्या कथा लुभावे
0: हे प्रसाद सुख से सोई जय
1: मन आठ बैठता का जस गावी जय
0: प्रसाद तुझ सब को मान
1: मुक्ता को जस रसन बखाने
0: प्रसाद तेरो रहता धर्म
1: मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म
0: जब तो दर के मान पावे
1: नानक पासे ती कर जावे
0: प्रसाद आरोप कंचन देही
1: लिव लावो तिस राम स्नेही
0: प्रसाद तेरा ओला रहता
1: मन सुख पावे हर हर जस कहत
0: प्रसाद तेरे सगल शिदर ठाके
1: मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताके
0: प्रसाद तुझ को ना पहुंचे
1: मन सा सा सिमरो प्रभु उचे
0: प्रसाद पाई दुर्लभ दे
1: नानक ताकी भगत करे
0: प्रसाद आभूखण पहरी जय
1: मन ति सिमरत क्यों मालस की जय
0: प्रसाद असो हस्त अस्वारी
1: मन ति सब को कबु न विसारी
0: प्रसाद बाग मेघ तना
1: रात रोई प्रपत ने मना
0: तेरी मनवंत बनाई
1: उठत बैठ सती से त्याई

0: बरसात तेरा सुंदर रूपा
1: सोप्रभ सिमरो सदा अनूप
0: बरसात तेरी निकी जात
1: सोप्रभ सिमर सदा दिन रात
0: बरसात तेरी पत रह
1: गुर प्रसाद नानक जस कहे
0: प्रसाद सुने कन नाद
1: जय प्रसाद देखे विस्माद
0: प्रसाद बोले अमृत रसना
1: जय प्रसाद सुख सहजे बसना
0: प्रसाद हस कर चल है
1: जय प्रसाद संपूर्ण फल है
0: प्रसाद परम गत पाव है
1: जय प्रसाद सुख सह समावे
0: सब रंग त्याग अवर कत लागो
1: गुर प्रसाद नानक मन जागो।

0: पदी
1: साध के संग मुख उज्जवल होता
0: सात संग मन सगली खोत
1: संग मिटे अभिमान
0: साध के संग प्रगटे सुज्ञान
1: संग बुझे प्रभ नीरा
0: सात संग सब होत निबेरा
1: साध के संग पाए नाम रतन
0: साध के संगे गुपर जतन
1: साध की महिमा बनना कौन परानी
0: नानक साध की शोभा प्रभ माए समानी
1: साध के संग गोचर मिले
0: साध के संग सदा पर खुले
1: साध के संग आवे बस पंचा
0: साध संग अमृत रस पुंचा
1: संग होए सब की रेन
0: साध के संग मनोहर बैन
1: साध के संग ना कत हुतावे
0: साध संग सिद्ध मन पावे
1: साध के संग माया ते भिन्न
0: साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न
1: साध संग दुश्मन सब मीत
0: साधु के संग महा पुनीत
1: साध संग किस्यो नहीं बैर
0: साध के संग ना बीगा पैर
1: साध के संग ना ही को मंदा
0: साध संग जाने परमानंदा
1: साध के संग ना ही होताप
0: साध के संग तजे सब आप
1: जाना साथ बढ़ाई
0: नानक साथ प्रभु बने आई
1: साथ के संग न कब हुतावे
0: साथ के संग सदा सुख पावे
1: साथ संग वस्त्र गोचर लहे
0: साधु के संग अजर सहे
1: साथ के संग बसे थान ऊंचे
0: साधु के संग महल पहुँचे
1: साथ के संग दृढ़े सब धर्म
0: साथ के संग केवल पार ब्रह्म
1: साथ के संग पाए नाम निदान
0: नानक साधु के गुरुवान
1: साथ के संग सब कुल उतार
0: साथ संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे
1: साथ के संग सोतन पावे
0: जिस तंते सब को बरसावे
1: साथ संग धर्म राय करे सेवा
0: साथ के संग सुभासुर देवा
1: साधु के संग पाप पलायन
0: साथ संग अमृत गुण गायन
1: साथ के संग सब थान गम
0: नानक साथ के संग सफल जनम
1: साथ के संग नहीं कष्ट काल
0: दर्शन पेट तो होत निहाल
1: साथ के संग कलोक धर है
0: साथ के संग नरक पर हरे
1: साथ के संग इहा उहा सोहेला
0: साथ संग विश्रत हर मेला
1: जो इच्छा सोई फल पावे
0: साथ के संग न बिरथा जावे
1: साथ ब्रह्म साथ रित बसे
0: नानक उधरे साथ सुन रसे
1: साथ के संग सुनो हर नौ
0: साथ संग हर के गुण गाओ
1: साथ के संग न मन ते विसरे
0: साथ संग सब पर निस्तरे
1: साथ के संग लगे प्रभु मीठा
0: साधु के संग कट कट डीठा
1: साथ संग पे आज्ञाकारी
0: साथ संग पई हमारी
1: साथ के संग मिटे सब रोग
0: नानक साथ मिटे संजोग
1: साथ की महिमा वेद न जान है
0: जेता सुने तेता बख्याने
1: साथ की

0: ज्ञानी सदा दलेप
1: जैसे जन्म कमल लेप
0: ज्ञानी सदा दे दोख
1: जैसे सूर सर्प को सोख
0: ज्ञानी कह दृष्ट समान
1: जैसे राग रंग को लागे तुल पवान
0: ज्ञानी कह तीज एक
1: जो मुस्ता को खोदे को चंदन लेप
0: क्या यह गुनाओ
1: नानक जो पावकता सह सुभाओ
0: ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
1: जैसे मैं न लागे जला
0: ज्ञानी कह मन होए प्रकाश
1: जैसे तरु पर आकाश
0: ज्ञानी कह मित्र सदा समान
1: ज्ञानी के नाई अभिमान
0: ज्ञानी ऊंचते ऊंचा
1: मन अपने है सत्य नीचा
0: ज्ञानी से जन पाए
1: नानक जिन प्रभात करे
0: ज्ञानी सगल की दीना
1: आत्म रस ज्ञानी चीना
0: ज्ञानी की सब पर माया
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कछुरा ना भया
0: ज्ञानी सदा समदर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी की दे समृद्ध वर्षी
0: ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुता
0: ज्ञानी का भोजन ज्ञान
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
0: ज्ञानी एक ऊपर आस
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ज्ञानी कह गरीबी स्वाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार महा
0: ज्ञानी कह नाही धंधा
1: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
0: ज्ञानी कह होए सुफला
1: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
0: ज्ञानी संग सगल उतार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
0: ज्ञानी कह एक रंग
1: ब्रह्म ज्ञानी कह वैसे प्रभु संग
0: ज्ञानी कह नाम आधार
1: ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार
0: ज्ञानी सा सब जागत
1: ब्रह्म ज्ञानी अबुंद

0: कोट होए पुजारी
1: कई कोट आचार विहारी
0: कई कोट में तीर्थवासी
1: कई कोट बन प्रमेय उदासी
0: कई कोट वेद के स्रोते
1: कई कोट तपीसर होते
0: कई कोट आत्म ध्यान तार है
1: कई कोट कब का विचार है
0: कई कोट अंतर नाम ते आवे है
1: नानक करते का अंत ना पावे
0: कई कोट भय अभिमानी
1: कई कोट अंध ज्ञानी
0: कई कोट कृपण कठोर
1: कई कोट अभिघातम निकोर
0: कई कोट पर दल कोहर है
1: कई कोट पर दुख ना करे
0: कई कोट माया श्रम माहे
1: कोट प्रदेश प्रमाए
0: तित लावो तित लगना
1: नानक करते की जाने करता रचना
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी
1: कई कोट राजे रस भोगी
0: कई कोट पंखी सर्प पाए
1: कई कोट पाथर बिरख निपजाए
0: कई कोट पौन पानी बैसांतर
1: कई कोट देश भूमंडल
0: कई कोट सस्य स्वर नक्षत्र
1: कई कोट दे दानव इंद्र से छत्र
0: समग्री अपने सूत तार
1: नानक जी जिस पावे तिस तिस निस्तार
0: कई कोट राजस दाम सातक
1: कई कोट वेद कुरान सिमरत शास्त्र।